धर्म दुआरे गावन तुदन चेत गोपत लेख जानन लेख लेख धर्म बिचारे गाव

गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सूर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरगा मश पे आले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मश पयाले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावन तुदनो जोद महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सेई तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले

रहाओ। सब सुरती मेलो सुरत कमाई, सब कीमत मेलो कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहण न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सातो सब तापो सब चंगे आईया, सिद्धां पुरखां किया वड्याईया। तुद विण सिद्धि किनै ना पाईया, कर्म मिलै नाही ठाक रहाईया। आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देह तिसै क्या चारा, नानक साचो सवारण हारा। आसा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाओ। आखण औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागै भूख। उत भूखै खाए चलिय है दुख। सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहेब साच माए रहाओ। साचे नाम की तिल वड्याई, आख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखण पाहे।

एक पढ़े बहु सिमरत शास्त जी कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो भावै मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवर न कोई। तू जोग जोग एको सदा सदा तू एको जी तू नेह चल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करै सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा तू करता सचियार मैंडा साई। जो तौ भावै सोई थीसी जो तू देह सोई हो पाई। रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनु कृपा करै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल विजोग मिल विछोड़िया संजोगी मेल। जिसनु तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया।

नहीं आनेओ। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मानेओ। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक ना जानेओ।

गोविंद दास तुहार। रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार। सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर तपाया सहज सेती, मन वजियां वादाइयां। राग रतन परवार परियां, शब्द गावन आईयां। शब्द ता गावहो हरि केरा, मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आ, तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे। दुख सब विसारणा अंगीकार, ओह करे तेरा कार्य सब सवारणा। सबना गला समरथ स्वामी, सो क्यों मनहु विसारे। कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नहीं घर तेरा, घर ता तेरा सब किशो है। जिस देह सो पावै, सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावै। नाम जिनकै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहेब क्या नहीं घर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया। कर सांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो, जिस दियां ए वडियाइया। कहे नानक सुनो हो संतो, शब्द धरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे, कला जित घर तारिया। पंच दूत तुद वासो कीते, काल कंटुक मारिया। तुर कर्म पाया तुद जिन कौ, से नाम हर कै लागे। कह नानक तै सुख हुआ, तित घर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुने सच्ची बाणी। संत साजन पए सर से, पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित, सत गुर रहया

विशुद्ध प्रभु का स्मरण नाही दमतरासा प्रभु का स्मरण पूर्ण आशा प्रभु का स्मरण मन की मल जाय अमृत नाम ऋत माहि समाये प्रभु दिवस साध की रसना नानक जन का दर्शन दसना प्रभु को स्मर सिप शीतनवंते प्रभु को स्मर सिपतवंते प्रभु को स्मर से जन प्रवान प्रभु को स्मर से पुरुख प्रदान प्रभु को स्मर से बेमहता दे प्रभु को स्मर से सर्व के दादे प्रभु को स्मर से सुखवासी प्रभु को स्मर सदा विनाशी सिमरन ते लागे जनाप दयाला नानक जन की मंगर वाला प्रभु को स्मर से पर उपकारी प्रभु को स्मर तन सत बलिहारी प्रभु को स्मर से मुख सुहावे प्रभु को स्मर तन सुख विहाव प्रभु को स्मर तन आत्म दीता प्रभु को स्मर तन निर्मल दीता प्रभु को स्मर तन अंतक

सब वस्त्र मिथे रंग संग में पिक हस्त मिथ्या त्रोह मोह अभिमान मिथ्या आपस उपर करत गुमान अस्त्र भग सद की शरण नानक जप जब जीव हर की चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हस्त पर तरु को हेर मिथ्या नेत्र पीखत पर तर रूपात मिथ्या रसन भोजन स्वाद मिथ्या चरण पर विकार गोता वह मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या धनी पर पुकार मिथ्या बस नेत बेकार बिन बुझे मिथ्या सपै सफल देह नानक हर हर नाम ले बिरथी साकद की आर जा साच बिना के हो बुद्ध सुचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवरता के दुर्गंध बैन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाये मेघ बिना जो के ती जाए गोविंद भजन बिन बिरते सब काम जीव कर बरक नर अर्थ दान तन तन ते जन जय घट से हर नाव नानक तांग बल बल जाओ रहत आवर कश आवर कमावत मन नि प्रीत मुख गुण लावत जानन हार प्रभु परवीन बाहर भेख न कहूं पीन अवर उपदेश अपना करे आवत जावत जन्म मरे जिस गए अंतर बसन रंगा तिसके सिख तरह संसार

अष्टपदी जय प्रसाद शक्ति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे जय प्रसाद सुगंध तन लावे तिस को सुगंध परम गत पावे जय प्रसाद वसै सुख मंदिर तिसै त्याई सदा मन अंदर जय प्रसाद गृह संग सुख बसना यार पह स्मरो तिस रसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई है त्यावन जो जय प्रसाद पाठ पटंबरण हडाव है तसै त्याग कत अवर लुभाव है जय प्रसाद सुख सिर सोई जय मान आठ पहर ता का जस गावी जय जय प्रसाद दुर्सभ को मन मुख ता को जस रस बखान जय प्रसाद तेरु रहता धर्म मन सदा त्याई केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जब दुर्गे मान भाव है नानक बल सेती घर जाव है जय प्रसाद आरोग अंजन देहि लिव लाभ सलाम स्नेहि जय प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस गहत जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभु ताके जय प्रसाद तुझको न पहुँचे मान सास स्मरु प्रभु ते जय प्रसाद भई दुर्लभ दे नानक तां की भगत करे जय प्रसाद अभुखन बहरे जय मन तिस सिमरत के आलस की जय जय प्रसाद आसव हस्त सवारी मन तिस प्रभु को कब होना विसारी जय प्रसाद बाग मिलक तना राख प्रोई प्रभु अपने मन जिन तेरी मन बंद बनाई उठत बैठत सदत सहते आई तिसहते आई जो एक अल खाई हाँ उहा नानक तेरी रखे जय प्रसाद करह पुन बहुदान मन आठ पहर का तिसका ध्यान जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सासा चितारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु स्मरु सदयानूप जय प्रसाद देने की जात सो प्रभु सिमर सदा तन रात जय प्रसाद तेरी पत रहे गुर प्रसाद नानक जस कह जय प्रसाद सुने गरनाद जय प्रसाद बिख विस्माद जय प्रसाद बुल है अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहजी बसना जय प्रसाद हस कर चल है जय प्रसाद संपूर्ण फल है जय प्रसाद परम गत पावे जय प्रसाद सुख सहज समावे ऐसा प्राप्त आगा वर्गत लग हो गुरु प्रसाद नानक मान जाग हो

के जला ब्रह्म ज्ञानी के मन होई प्रगास जैसी तरो पर्याकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र शत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी उर्ति ऊंचा मन अपने सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जैन प्रभाव करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल गिरी ना तमरास, ब्रह्म ज्ञानी जी न ब्रह्म ज्ञानी की सब परमया। ब्रह्म ज्ञानी ते कशबरा न पहया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन दिमुक्ता। ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी को प्रयास। ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह। ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाह, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं तंदा। ब्रह्म ज्ञानी तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कह होए सो भला। ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार। नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी के कह रंग, ब्रह्म ज्ञानी के वसे प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी के नाम परिवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहम मन त्याग। ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी के घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, ब्रह्म ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता। ब्रह्म ज्ञानी का होय अजंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभु आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बाल बल जाइए। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी का सकल मन माही। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश। ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाया दखिर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी कंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता। ब्रह्म ज्ञानी सद जीवन नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जोग जी का दाता। ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष।

कर ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी। नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक और तारे जो अंतर नाम सर्व मैं पिखे भगवान नेमख नेमख ठाकुर नमस्कार। नानक हो बरस सगल निस्तार अष्ट पैरी मिथ्या नाही रसना परस मन मह प्रीत निरंजन दर्श पर त्रै रूप न पिख नेत्र साधगी टहल संत संग हे। कारण न सुने काहू कोई निंदा सब ते जाने आवश्य को मुंदा। गुर प्रसाद विखिया पर हरे मन की वासन बंदे डरे इंद्रिय जित बन तुगते रहत नानक कोड मध्य कैसा परस। वैष्णो सो जैस्यो पर सो प्रसन्न विष्ण की माया ते होए भिन्न कर्म करत होवे नहि कर्म तिस वैष्णो क निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं वर्षे केवल।

भगवती भगवंत पद का रंग सगल त्यागे दुष्ट का संग मन दे बिनसे सगला परम कर पूरे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवे तिस भगवत कीमत उत्तम होवे भगवंत की टहल करे नित नीत मान तन अर्प बिसन प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे सो पंडित जो मन पर बुद्ध है राम नाम आत्म शुद्ध है राम नाम सार सुखीवे उस पंडित गए उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो उनने आवे वेद प्राण सिमरत बुझे मूल सूखम है जाने अस्थूल चौह वर्णा को देव देश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर को ज्ञान चौह वर्णाम जपे कौ नाम जो जो जपे जिसकी गत होए साध संग पावे जन कोए कर कृपा अंतर उर तारे पस प्रीत मुग्ध पाथर को तारे सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम कहो जुगत किते न पाइए धर्म नानक दिस मिले जिस लिखे तुर करम जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नदरी आया दास दिसंदन भाई तन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगह प्रवान अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब जीव रहे सगल संग आत्म उदास ऐसी जगत नानक रामदास प्रभ की आ गया आत्म ही तावे जीवन मुक्त सो कहावे ते सहर्ग दे सोग सदानंद नहीं वियोग।

के दास तिन को कई कोट पर ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट दत्त के बीते सदा निहारे को नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर पै सद सद ही जीवे कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस गुसै सुमावे अपने जन को सा सा सुमारे नान कोई परमेश्वर के प्यारे श्लोक करण कारण ब्रविक है दूसर नहीं कोई नानक तिस बलिहार ने जल थल नहीं अल सोई अष्ट पैरी करण करावन करण जोग जो तिस भावे सोई होग खिन में थापो थापन हारा दनी किश पार बार हुक्मे तार अतर रहावे हुक्म

दृष्टि को सुनु आवे तस्तुत काल दे दिस प्रगटावे जा को अपनी करे बख्शीस तांगा लेखा नगन जगदीश जियो पिंड सब तिसकी रास घाट घाट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनत अब बनाई नानक जीवे देख बिडाई इसका बल नाही सहाथ करन कराव सर्व को नार आज्ञाकारी बपरा जियो ज्योतिष पावे सोई फन थियो कब हूँ जनीच में बसे कब हूँ सोग हर रंग हसे कब हूँ निंद चिंद व्यवहार कब हूँ ओब आकाश प्याल कब हूँ मित ब्रह्म विचार नानक मिला बनहार कब हूँ निर्द ग्रह भात कब हूँ सोई रह दिन रात कब हूँ महाक्रोध विकराल कब हूँ सर्व की हो दुर्वाल।

सोई होए। नानक दूजा अवरन कोई, कबहू सत्संग तिहो पावे, उस सत्संग बहु न आवे। अंतर होए ज्ञान प्रकाश, उस अस्थान का नहीं विनाश। मान तन नाम रति ग्रंग, सदा बसे पर रूप के संग। ज्यों जल में जलाह कटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना।

गर्व गली अष्टपदी जिस गय अंदर राज अभिमान सो नरगुपति होवत सुवान जो जाने में जो बरबंद सो होवत विष्टा गजंत।

स्वर्ग फिर फिर अवतार अनक जतन कर आत्म द्रवे हार दर्ग है को कैसे गवे आप उसको जो भला कहावे तिसे भलाई निकटने आवे सर्व की रेन जाका मन होए कहो नानक ता कि निर्मल सोए जब लग जाने मन ते कछ होए तब उसको सुख नहीं कोए जब हे जाने में कुछ करता तब लग रुजोन में फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग ले चलना ही जीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय नहीं सजाई प्रभ कृपाती बंधन टुटे गुर प्रसाद नानक हो छुटे सहस खटे लख कुट तावे तृप्त नावे माया पछे पावे अनंग भोग विखे की करे नह तृप्तावे खब खब मरे बिना संतोख नहीं गोरा जय सुपन मनोज मृति सुभ का जय नाम रंग सर्व सुख होए बटभागी किसे प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नान घर जाव करण करा करण करावन करण हर इसके हाथ कह विचार जय सी दृष्ट करि तैसा होए आपे आप अपरो सोई तिंजो किश की नो सपने रंग सब ते दूर सुभ के संग बुझै दिख करे विवेक अप है एक अप है अनेक मरे न बिन सया बिन जाय नानक साध ही रहे समाए आप उपदेश समझाए आप रचे सबके साथ आप किन्नु अपन बिसारे सब काश उसका उकरने हर उसते पहने कह हो केश होए थान थनंदने कसोए अपने जले ताप करने हर कौतुक कर रंग अपार मन में आप मन अपने माहे नानक कीमत कहने न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुरु प्रसाद गिने वख्या नी सच सच सच सब कीना कोट मदे गिन बिरला चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर पारिया नू निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत

प्रभु के सेवक दुख विसारण आपे मिले गुरबार गुर का शब्द पे निहाल उनकी सेवा सोई लग है जिसनो कृपा करे मिट भाग नाम जब तबा विश्राम नानक तेन पुरख गौतम करमान जो किस करे सो प्रभु के रंग सदा सदा दस हर संग सह सुपाई हो वै सो हो करने हर पछाण सोए प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टान जिसते उपजे किस माही सुमाए ओए सुख निदान उन हूं बने आई आप सो अब दिनमा नानक प्रभु जने को जन श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभु बिरथा जन हर जग सुमन उतरिय नानक तिस बिलहार अष्टपदि टूटी गण हर गोपाल सर्व ज्योति प्रतपाल सगल चिंता जिस मन माहे तिस्ते बिर

प्राणी लोचै गोए तिस गिर नाई तरे किश का मंगत नानंग। जब एक हर नाम रूपवंत हुए नाही मोहै प्रभ की जोत सगल घट सो है धर्मवंता हो गया गुगर वह जा साग के तिस गह दिया दर वह अत सुरा जे को कहवे प्रभ की कला बिना कहता वे जे को वह दाता तिस दिन हर जने गवार।

परसन अष्टपदी अब नसी प्रमन में रख मानो की तू प्रीति आवृति स्थिति पर नाही कुछ बोए सर्व निरंतर को सोए अपे बिना बिदन गहर गभीर सुजन पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद।

जागृदय प्रवेश सत निरत बुझे जे कोई नाम जपता कीवत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सृष्टि सुकरण हर आवरण बुझ करत विचार करते किमित न जन किया नानक जोत सुभावै सो वरतिया विस्मन विस्म कहे विस्मार्त जिन बुझैत सहै सुवाद प्रभु कै रंग राज जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुर्घटन हर जा कै संत रह संसार जन का सेवक सुबुड भागी जन कै संग एक

की महिमा कौन बखानो, जिसका गुण कहे क न जानो। आठ पहर प्रभु वसह जोरे, कहो नानक सही जन पूरे, मन मेरे तिन की ओट ले, मन तन अपना तिन जन दे। जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता। तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसका दर्श सब पाप मिटावे। अब

रखिया से दंत्र पिता ने पूर्ण पुरख नहीं डोला ने सोपर परे प्रेम रसना गोपले चाव साध के संग परे सरन आन सब त्याग अंतर प्रकाशन अन दिन लिवलाग बड पागे दपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेव की मनसा पूरी पे सतगुर ते निर्मला।

अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए भंडार जो किछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत।

कितिया सुरती सेवक केते नानक अंत नयंत। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तथा नाद विनोद कोट आनंद सर्व खंड की बाणी रूप तथा घाट घड़ी बहुत अनूप। ताकिया गल्ला कथिया ना जाहे जे को कहे पिछे पछताए तथा घड़ी सुरत मत मन बुद्ध।

है, अजाम है, अपूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग प्रयात छंद। नमो सर्वमान्य समस्त निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे इंद्र संगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रपंगी परमाथे समस्ति विभूते कलंक बिना ने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम बिरदे, नमो शस्त्र पाणे, नमो अस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते, नमो नित नारायणे।

मान माने नमो रोग रोगे नमो संग स्नान नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे स्म संवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद करता अध उर्द अर्धंग अगंग उगहरता परम परम परमेश्वरं प्रोष पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अशेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तोपराजी समस्तस्तामं तेरा जोर चाचरी छंद जले है थले है अपीत है अपेय है प्रभु है अजु है अदेश है अपेस है भुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे आनंदे स्वरूपे नमो सर्व माने समस्त निधाने नमस्तवंग निरनाथे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे।

जात जाकर जन्म मरण भी चक्कर बकर फिर चतर चक मान प्रतीन लोग चौदह के बिखै जग जापई जे जाप आद देव अनाद मूर्त थाप्य सब जे थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रच्यो स्वम भव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सुपरम।

कृषय भगवती शांतत्व प्रसाद कथते किया शिज दिशा किया भिज पिसै किया गंज करमे किया भंज परमे किया भिज लोक किया दित सुख कि उदूत वरण कि विभूत करण कि राजंग प्रभा है कि तरमंगत जा है कि अशोक वर्ण कि सरबा भरण कि जगतंग कृति है कि शतरंग क्षत्रि है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुभव रूप है के आद अदेव है के आप अभेव है के चित्रंग विहीन है के कह दीन है के रुज रिजाक रिम रिहाक कि पाक बेअब है कि गैबुल गैब है कि अफुल गुनाह है कि सहान साह है कि कारण कुनिंद है कि रुज देहन है कि राज करीम है कि कर्म करीम है कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र दान्य है कि सर्वत्र गौन है कि सर्वत्र पावन है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राजा है के सर्वत्र साजा के सर्वत्र दीना है के सर्वत्र लीना के सर्वत्र जा हो के सर्वत्र पा हो के सर्वत्र देसा है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजा है के सर्वत्र राजा है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र भूख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देसा है के सर्वत्र पेशा है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीम है के परमंग फहीम है के आकल अलाम है के साहिब कलाम है के हुस्न अल वजू है तमाम अल रुजू है हमेशा अल सलाम है सलीखत मदाम है गनीमुल सकस्ता है गरीबुल परस्ता है बुलंद अल मकान है जमीन अल जमान है तमीजुल तमाम है रुजुल निदान है हरीफुल अजीम है रजायक यकीन है अनेकुल तरंग है अपेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुयुक्त

भगवान है, तमाम तमीज है, समस्तल अजीज है, परंग परमेश है, समस्तल अदीस है, आदेशुल अलेख है, हमेशुल अपेख है, जमीन उल जमा है, अमी कुलिमा है,

है, करुणा कर है, अजपा जप है, थपा थप है, अकृता कृत है, अमृता अमृत है, अमृता अमृत है, करुणा कृत है, अकृता कृत है, तरणी तृत है, तेश्वर है, परमेश्वर है, कृता कृत है, अमृता अमृत है, अजबा कृत है, अमृता अमृत है, नर नायक है, कलकायक है, विश्वंपर है, करुणालय है, नृप नायक है, सर्व

कोई अवरण त्याहूं जो भर चाहूं सो तुमते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिय है चुन चुन सत्र हमारे मारिय है आप हाथ दै मुझे उभरिय मरण काल का त्रास निवरिय हु जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जुजू करे हो रच्छा।

ग्रंथ करा पूर्ण सुभ्रांता किल्बिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखिन कोशय करता। श्री अस्तोज जब पै दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावै सोई दुख नत सह व्यापत कोई।

निकट न तिन नर के रहै हो जो या कि एक बार चौपाई को कहै चौपाई संबत सत्रह सहस पंड जय अर्ध सहस फुन तीन कह जय भाद्रव।

सुनो संतह सो सिख सनमुख होए। जे को गुर ते वे मुख होवै बिन सतगुर मुक्त न पावै, पावै मुक्त न होर थै कोई। पुछो विवेकियां जाए अनेक जूनी भरम आवै बिन सतगुर मुक्त न पाए।

तेहि गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रैण मिहानी गुर कृपा ते असे जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोलह अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसना

जिचर हर रस पल्ले ना पाए, हर रस पाए पल्ले पिए, हर रस बहुड़ ना तृष्णा लागे आए, एहो हर रस करमी पाईए सतगुर मिले जिस आए, कहे नानक होर अन रस सब

सतगुरु जे वडदाता को नहीं सब सुनियो लोक सुभाया सतगुरु मिले सच पाया जिन विचों आप गवाया जिन सचो सच बुझाया जिन सचो

तन फिटे फिट करेन मन भूखे चुली परेन कहो नानक सच त्याई सुच होवे ता सच पाई है पौड़ी चुते अंदर सब कवि नदरी हेठ चलाएगा आपे दे वड़ियाईया आपे ही कर्म कराएगा वडो वडा वड मेदनी सिरे सिर धंधे लाएगा।

सत्संग जी। बोलो जी, वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाहसी भगवती पाशी दर्शन प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याय फिर अंकित गुरते अमरदास रामदास भय सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया करण उन्होंने आवैता है सब थाई हुए सहाय दसवें पाचा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साहब थाई हुए सहाय दसा पाची ने पुत्र आत्म श्रू साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ने पार धार त्यंतर के खालसा से बोलो जी वाहे ग्रीवन वाहज आप जी दे पांच प्यारी चार साहबजादे चाली मुक्ते हटिया जपिया तपिया जिन्हें नाम जपिया मन चकिया देख चलाई थे वाहे देह के निट की दसना प्यारे से प्यारे की कमाई दस अंतर के बोलो जी वाहे गुरु जन्ना सिंगा सिंगणिया धर्म है सी दिते बाजवान कटवाए खोपरिया लुआईया चरखड़िया से चढ़े आर न चराए गुरुद्वारे सेवा कुर्बानियां की धर्म ने आ रहा सी किसे देखे संसार संसार आए तिना की कमाई दस अंतर के बोलो जी वाहे गुरु पंजा ताकत गुरुद्वारे दस अंतर के बोलो जी वाहे गुरु प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे नाम चेता है चित आवण का सदका सर्व सुख हो गए जहां जहां गुरु खालसा जी साहब चंद्र चरियात देख देख की फतेह वृत की पहज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोलबाले बोलो जी वाहे गुरु सिखानू सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब ने दर्शन स्नान चौकियां चंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु सिखा दा मन नीवा मत उची मत पात के राखे आप वाहे गुरु गुरु की प्रवाह पंथ सदा सहाय दता दियो गुरुद्वारा निरकाना साहब पंजा साहब के होर गुरुद्वारे गुरधाम जिन्हों तो आप जी पंथ में छोड़िया गया है उन्होंने खुले दर्शन दार से सेवा समा सदा अपने खालसा जी बख्शो हे नोटिया की ओट गुरु ने आसरिया दे आसरे गुरु धन धन गुरु ने सतार जियो दोहे कर जोड़ करो अरदास तुत भावे ताने रास हे जीवन वास जी आप जी दचन कामना अरदास बेनती आपने बख्शिश की है कृपा की अमृत वेले प्रकाश मान हो संकतों दर्शन दर्ज के निहाल सतार जियो बेहद बाणिया के पाठ आज रागी सिंह ने आपके चरण यात्रा की वार्ता कीर्तन कीते ने विद्वान भी आने आज हुक्मनामे की कथा त्यार की कृपा करो होइया भुला चुका ने माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सत्य अनुप्राण करो बाणी का भाव सारिया संगतों के हिरदे विसारने की वार्ता करो जी अगो तो शोध से विद्वानी उटारी मन बुद्धि बख्शिश करो बाद इस खुशी आरती दिया बख्शिया दत्ता पितर कलाम शाह देगा त्यार करने हाथ दतार आप दी भोग लाओ शीत प्रसाद सात संगत की रचना लायक हो जो जी सके श्वास श्वास आप जी का पितर नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी भी भगवान कृपा करो आपकी बख्शिया दातों जो नगर तुट सवारियां प्रवान करनी आपके चरणा सेवा करते सारे अटारिया सिंह सिंगणिया तंदुरुस्ती बख्शो जाटिकला बख्शो सदा ही इस तरह अपने चरणा सेवा की भावना बख्शे पालता करो कृपा करो की दता अमृत वे तो लैके दाती आई साफ संत संसाल जी दत्त प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ संगतों का दर देते फुल पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी की भगवान कृपा करो सिख कौम खालसा पंथ नूं एकता सुभाग प्यार दी बख्शिश करके सत संतोष दार बख्शो चान ना जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शो दतार हर मैदान दीवान फतेह बख्शे दादा करो जी हिंदी गुरु की कृपा करो दूर दराज कर बैठी लाइव खेता की सरण करी सारी संगतान की हाजरी प्रवान करो घड़िया लेके लाओ रब दतार आपकी बख्शी की संगत बख्शे संगत आपके चरणा धन्यवाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं वीर बीमार बेहद माया ऑनलाइन गुरु घर गुरु घर सेवा संगत संगत माया भेटा घर ही चरना प्रवान करो बख्श कर साहब दमाइया सफल करो कार्य वाद बदतार सब संगत दुभकामना वास्तव पूरी करो जी मेहरा कराओ वीर बीमार कृपा करो सेवा प्रवान करो भुला चुका की माफी बख्शो वेदर हुक्मनामे बख्शे करके उपरंत लड़ीवार सहज पाठ करने वास्ते आग्ञा बख्शो रेंदे कार सवार के चरण दुनिया बनाओ शुद्ध अते पितृ सेवा लैने के वास्ते दतार सही प्यारे मेरे जिन्हें अपने आपका नाम जता हुआ नानक नाम चढ़ी कला तेरे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह दोहरा आग्ञा भई अकाल की तभी चलायो सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो
ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋ ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਿਲੇਂਗੇ ਬਜੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਚੜੇ ਸਭ ਤਰੇ ਪਾ ਜੋ ਸ਼ਰਨ

तृष्णा अग्न बुझाए, सुखा सिर सदा सुख होए, जा विच्छ आप गवाए, गुरमुख उदासी सो करे, जे सच

पौड़ी जिनी हर हर नाम ते आया तिनी पायड़ी सर्व सुखा सब जन्म तिना का सफल है जिन हर के नाम की मन लागी भुखा जिनी गुर कै बचन आराध्या तिन विसर गए सब दुखा ते संत भले गुर

बिन सतगुरु सेवे ठौर न पावही, मर जम्मह आवह जाहे। बिन सतगुर सेवे फिक्का बोलना, नाम नवसै मन माहे। नानक।

है अन दिन हर बैरागी पौड़ी से गुरसिख धन धन है जिन्हें गुर उपदेश सुनिया हर कन्नी गुर सत

मन हट किनै न पायो, सब थके कर्म कमाए। मन हट भेख कर भरम दे, दुख पाया दूजै पाए। रिद

पौड़ी। धन धन सतपुरख सतगुरु हमारा, जित मिले हमको शांत आई। धन धन सतपुरख सतगुरु हमारा, जित मिले हम हर भगत पाई। धन धन हर